फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अरसूम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम सुनाई देता है। तो चलिए यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज रविवार की सुबह की प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त।

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रविवार के सुबह की प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। अगला भजन अनूप जलोथा जी की

0: अनूप जलोत्रा जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अनूप जलोत्रा के बाद पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं आज रविवार की भजन यात्रा प्रोग्राम में।
1: भगवत प्रेमी सज्जनों, प्रस्तुत भजन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मधुबन में झूला झूल रहे हैं और राधा की सखियां व कन्हैया के सखा ग्वाल बाल सभी मिलकर झोटा दे रहे हैं। इस मनोहर दृश्य को देखकर भक्त अपने हृदय के भावों को किस तरह से व्यक्त कर रहा है, सुनिए।

पास में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार मिलकर ये सुंदर और सुंदर सा भजन को सुनते हैं। आज के प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सोनू निगम की आवाज में। सोनू

ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। अब की बार सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS के जरिए आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं। एक सुंदर सा श्री कृष्ण भजन पेश किया जा रहा है।

ये पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलते हैं गुरमीत और मीना की ओर।

ना किया बांस में पीछ की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं आज रविवार के भजन यात्रा प्रोग्राम में। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और खास तौर पर सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ।

सुनवलू रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। रविवार का दिन है, 28 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनवलू को शुभ सुबह, शुभ दिन, हेलो खुदमोर, गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। आप सभी सुनवलू जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। आज भी गर्मी सा मौसम होने वाले है, रात्रि की ये वक्त में काफी बारिश हुआ, तो फिर भी आप सभी सुनने वालों को आज का दिन शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। और यहाँ से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर, गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। ये प्रोग्राम जो हमेशा आपके लिए पेश किया जा रहा है, तो जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। सुबह की वक्त है, तो सुबह की वक्त हमेशा सुनने वालों जो होते हैं सबसे पहले गर्मा गर्म कॉफी या तो चाय पीते हैं। तो चले मिलकर आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। चले पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। विश्वजीत का एक खास फिल्म की ओर हम आपको ले चलते हैं, फिल्म मेरे सनम पुकारता चला हूं मैं।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में आई डो फिल्म मेरे सदा मुसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट भी इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में।

और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आज की प्रोग्राम में। हम आपको ले चलेंगे किशोर और लता जी की ओर। अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, खूबसूरत प्यार भरी गाने नखमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए पेश किया जा रहा है। अपने प्यार के सपने सच हुए,

कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुन वालों की सेवा में अपने प्यार के सपने बस सच हुए। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में चले मिलकर अब भी बार ये गाना कुछ

काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। शहर उत्तरक से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में उषा खन्ना एंड सुरेश वदकर प्रोग्राम

अगले प्रोग्राम में अभी बार मेहदी हसन और महनाज की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक खास पाकिस्तानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है दो साथी जीवन के।

जीवन के मेहदी हसन और महनाज की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की ओर।

रेडियो SBS के जरिए खासगाना किशोर कुमार की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना लाइव के जरिए रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और वो भी शहर उत्तराखंड से। ये प्रोग्राम सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत सा गाना होगा, और गाना होगा खासतौर पर मुकेश और लता जी की आवाज में।

लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60 इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। तो चले प्रोग्राम में आपकी बार किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: गुस्सा

सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना भी आपने सुना, तुझे देखा तुझे चाहा। असरों मीठे के गाना आप सभी ने सुना। आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में सुनकर और काफी पसंद किया है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे लता जी की आवाज में, जो पेश होगा फिल्म लव इन टोक्यो। फिल्म लव इन टोक्यो, उसी फिल्म का एक गाना। फोर्ट ब्यूरक की रहने वाली सोनिया, सोनिया ये खास गाना आज के प्रोग्राम में सुनना चाहती है, तो चले मिलकर सुनते हैं लव इन टोक्यो फिल्म का गाना लता जी की आवाज में। फोर्ट ब्यूरक की रहने वाली सोनिया ये खास गाना को मांग किया है।

नौफिन टोक्यो फिल्म का गाना पेश की गई लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में अभी आपने सुना। और फोर्टबर्ग की रहने वाली सोनिया, सोनिया की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। आसरो में थे सोनिया, अपना मांगी हुई गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है, आज रविवार का दिन जो है, गर्मी सा मौसम है, मत भूलना ज्यादा हिस्सा में पीने के लिए पानी अच्छा होगा। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में, और गाना को मांग करने वाली है जर्मनी डॉयचलैंड की रहने वाली जेन। जेन ये खूबसूरत गाना मांग किया है, यानी कि जेन और मार्शल एक दूजे के लिए बड़ी प्यार बड़ी मोहब्बत के साथ ये गाना को मांग किया है। इस गर्मी सा मौसम में कि मुझे छू रही है तेरी गर्मोसा से।

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई, और खास तौर पर डच्लैंड से जेन और मार्सेल एक दूजे के लिए दिल की गहराइया से प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना आज की प्रोग्राम में बस पेश किया है। जेन एंड मार्सेल ओकन हेल मोए डख, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, और गाना को मांग करने वाली है फेल्थोफन शहर की रहने वाली चंद्रा भोला सिंह। चंद्रा भोला सिंह भी इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं और अपना फेवरेट भरी गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में। आप तो ऐसे न थे फिल्म का नाम।

वेल्थोवन शहर की रहने वाली चंद्रा भोला सिंह की मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म आप तो ऐसे ना थे, उसी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश की गई तू इस तरह से मेरी जिंदगी में बस शामिल है। असर उम्मीद है गाना सुनकर काफी पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। खासतौर पर एंटोव शहर से भाई हैंक महावीर, हाँ हैंक महावीर भी रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और एक खास गाना की मांग किया है आज के प्रोग्राम में और मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यकीन, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में मांग किया है। एंटोव शहर का रहने वाला हैंक महावीर ये गाना मांग किया है, यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यकीन का गीत पेश के गए, यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है बस तुमसे तुमसे। एटोफ़ शहर का रहने वाला हैंक महावीर का खास मांगी हुई गाना आप सभी सुनने वालों के लिए, खुद अपने लिए, अपना पूरा परिवार के लिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। भाई हैंक महावीर आपके लिए भी सो लोबी और शुभ दिन पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर एंडहोफ़ शहर के अंदर में सुनते ही रहना। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर एक खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है द माइटी मुकेश की आवाज में, चले मिलकर सुनते हैं।

और अन्य फिल्म मल्हार, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई द माइटी मुकेश की आवाज में। गाना भी आपने सुना उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर का मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 9 minutes over 10:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। बाहर गर्मी सा मौसम है, स्टूडियो के अंदर में ठंडी ठंडी सा है और पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। हमारा प्रोग्राम जो है डीएबी प्लस द्वारा सुतमेर शहर के अंदर में भी सुनाई देता है और सुतमेर शहर के अंदर में नेहा इस वक्त हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और ये गाना को मांग किया है किशोर एंड लता जी की आवाज में। आपकी कसम फिल्म का नाम

लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है, करवटे बदलते रहे सारी और सारी रात आपकी कसम। सुतमेर शहर की रहने वाली नेहा ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियो SBS का प्रोग्राम सुतमेर यानी कि प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी पेश किया जा रहा है। तो हमारा प्रोग्राम प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में दे या बे रेडियो की जरिए भी आप सुन सकते हैं, अपना मोटर कार में, अपना घरों में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हम आपको ले चलेंगे द माइटी मुकेश की ओर। फिल्म आस का पंछी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना। किशोर या कहिए माइटी मुकेश की आवाज में आस का पंछी फिल्म का नाम। गाना को मांग करने वाली है रोटरडम शहर की रहने वाली शीला, शीला जो हमारा प्रोग्राम हमेशा और हमेशा सुनते हैं और रेडियो SBS का प्रोग्राम काफी पसंद करते हैं। आज सुबह तार किया, कुछ बातें हुए, काफी कॉम्प्लीमेंट्स दिया है। तो माइटी मुकेश की आवाज में रोटरडम शहर की रहने वाली शीला ये गाना मांग किया है।

गाना जो पेश की गई फिल्म का नाम आस का पंछी, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। माइटी मुकेश की आवाज में जो पेश की गई रोटरडम शहर की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है और वो भी एक सुनने वालों की मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना। देनहाग शहर का रहने वाला विनोद ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है किशोर कुमार की आवाज में। विनोद हमेशा काम पर जब भी नौकरी पर होते हैं तो वहां पर हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, लेकिन आज घर पर आराम से बैठकर हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया है किशोर कुमार की आवाज में ये गाना।

0: किशोर कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में डेनहाग शहर का रहने वाला विनोद का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में और आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम एक आखिरी और आखिरी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। कल सोमवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खबरें की ओर। खबरें के बाद न्यूज मौसमी समाचार और फरकेर से इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगी। खासतौर पर स्थापोर शहर से भी शांति मताओ भी तार किया, शुभ दिन पेश किया जा रहा है पूरा परिवार को तार करने के लिए। लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। देनहाग शहर से कमला भी तार किया है, कमला भी प्रोग्राम सुनते हैं और स्टूडियो की ओर तार किया है। शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voel de muziek, beleef

फिल्म का नाम धोखा। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। फिल्म का नाम होगा डूब। हरिहरन और श्रेया जी की आवाज में अब की बार गाना पेश किया जा रहा है। हरिहरन एंड श्रेया जी की आवाज में फिल्म का नाम धूप, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

हरी हरन और शरिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तुलसी कुमार और हिमेश हरी शबिया प्रोग्राम में होगा।

हिमेश रेशमिया एंड तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए कुमार सानू और अलका की ओर हम आप भूले चलते हैं। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

62 66 11 और रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। अलका एन सोनू निगम अबकी बार प्रोग्राम में दिल मांगे मोर, फिल्म का नाम दिल मांगे मोर।

0: रेडियो वेस में इसकी सर ये सोनू निगम और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम रेडियो SBS का बस सुनते हैं, जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। चले कुमार सानू एन कविता कृष्णमूर्ति की ओर।
1: देखा है तुझे चैन नहीं आता है, इस जमाने में मुझे कुछ और नहीं भाता है, दिल मेरा चाहत का

आवाज में ये कैनबिस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव शहरी तरह से बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो 24 पर तक आप सभी के लिए बड़ा एक बार होता है 0302656560। से ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वाले।

SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए प्रोग्राम में अपनी बार ये खास गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये गाना भी एक एल्बम में से निकाला हुआ गाना है।

और अनुराग की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलते हैं सिद्धार्थ के आवाज में।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ गाने एल्बम में से निकाल कर आप सभी के लिए आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले मधु की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुनवा लो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है।

रेडियो SBS के जरिए जूनिता गांधी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अल्ताफ सईद के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

देवजीत के आवाज में आलबेबी से निकाल कर ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

सभी सुनने वालों को शुभ दोपहर एंड हेलो गुड मिडनाइट जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो यहां से हम आपको ले चलेंगे तकरीबन 2 बजे तक कुछ लोकल नखमे की ओर इस गर्मी सा मौसम में। पहला गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश होगा हरदा सुखराम और विम दमड़े की आवाज में। विम दमड़े एंड हरदा सुखराम प्रोग्राम में ये बाहर कहे।

रेडियो वेस बेस के जरिए विम डमरी एंड खैरदा सुखराम की आवाज में ये गाना पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज रविवार का दिन है और आज सुबह 11 बजे से सुपरमार्केटों को दवाख जो है खुला है और आज शाम 6 बजे तक दुकान खुला रहेगा, तो जरूर है और जरूर आप तशरीफ फरमाइए प्रिंस बर्नर्ड लाइन नंबर 4 एंड 5 तक पर।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 14 मिनट वेटेड हो चुका है 1:03 ओवर इन गर्मी सा मौसम है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अभी अभी मैंने एक लेकर स्काफ़ तैयार की।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए अजनबी कौन हो तुम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर। निशा बी के आवाज में जरूर आप सुनते ही रहना।

मैं शिव, आप हर एक के लिए बस पेश की गए रविवार के खास दोपहर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, चले लोकल नखमे का खास प्रोग्राम में। हम आपको ले चलते हैं गाना जो न्यू बिल्कुल नए रिलीज किया गया है, और वो है रियल सेलेक्शन का नया गाना, बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है फारन फारन। तो चले मिलकर सुनते हैं रियल सेलेक्शन का नया गाना, रिखिलियो एंड रिक की आवाज में।

रेखिलियो और रेकी आवाज में ये गाना पेश की गई, बिल्कुल नया गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। म्यूजिक फरमाशी रियल सेलेक्शन का बिल्कुल नया गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। लाइव के जरिए ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और वो भी उत्तराखंड शहर से बिल्कुल लाइव ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो के अंदर काफी तार अंदर आते रहते हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी तार कर रहे हैं और प्रोग्राम में भी साथ देते हैं। रूबेन प्रोग्राम में होगा और रूबेन की आवाज में ये गाना।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रूबेन चीटन की आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई।

रेडियो SBS के जरिए प्रशांत के आवाज में ये गाना बस पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए प्लस रेडियो हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड और दूर दूर शहरों तक और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी दूर दूर शहरों तक DAB प्लस रेडियो के जरिए इन ये ऑटो एंड नेटवर्क टाउस डबल लाउस्टर

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चरित्र से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है लाइव फनाइट मूव स्टार्ट फॉर नीदरलैंड दूर दूर शहरों तक डीएबी प्लस द्वारा ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। उसे सुनने वालों इन दिनों डीएबी प्लस रेडियो गीजर ये बस प्रोग्राम को सुनते हैं। एक सुनने वालों है जो इस गाना की गुजारिश किया है सविता सिंह की आवाज में।

सविता सिंह के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा मरहूम शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में और साथियों की आवाज में आप सुनते ही रहना बने है दिल के काले मरहूम शहीद वाहिद हुसैन और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में शेयरू तरह से ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है कि ग्लेन स्टूडियो में आ गए हैं, उनके जरिए प्रोग्राम जरूर अभी सुनते ही रहना।

और रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो टाइट हो चुका है। हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए, हमारा प्रोग्राम बस यहीं से खत्म होने पर आ गए हैं। कल सुबह ठीक 7 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। अभी एक गाना के बाद ग्लेन के जरिए प्रोग्राम आगे तक पेश किया जाएगा और 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम पेश होगा, तो जरूर रेडियो SBS का ये प्रोग्राम सुनते ही रहना। और 6 बजे से RJ आंशलिक के जरिए प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

के रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। किशोर कुमार के वास में भी आप सुने थे ये ओपनिंग नंबर हमारा हिस्सा के प्रोग्राम से। मैं हूँ आपका खिमुजार ग्लेन, बस सुनते रहना हमारा हिस्सा के प्रोग्राम यहाँ से ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS और वो भी शरीर रख के अंदर से।

शैलेंद्र सिंह और साथ में आशा भोसले के वास में भी आप सुनते और अब की बार नितिन मुकेश साथ में कंचन के वास में बस सुनते रहना।

सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल न्यूज फरकेज इंफॉर्मेशन और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS।

तीन बजकर इस वक्त 5 मिनट गुजर रहा है, 5 मिनट ओवर 3। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर रेडियो SBS, वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना लाइव के जरिए। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम

0: जिसमें हिस्सा ले रहे हैं सुरनाम का सभी मशहूर टॉपर्स।
1: रामदेव चैतू के बाद में सुनते रहना
0: प्रोग्राम जो मैंने कहा शुरू है एक खास मशहूर गाने वाले से। ये शख्स माइक्रोफोन आने से पहले ये भी कहना मैं मुनाफी समझता हूँ कि यहाँ देखो वहाँ देखो या रात की सपना देखो, यहाँ सुनो या वहाँ सुनो, हर एक महफिल में रौनक ही रौनक है। ट्रिनिडाद हॉलैंड और सुरनाम में गूंजता
1: कि रोज देखिला तो के सपनवा में। रामदेव चैतू के वास में सुनते रहना।
2: रोज

0: रामदेव चैतु के पास में भी आप सूर्य के रोज देखिला तो के सपनवा में
1: चलबू झमक झमक के गोरिया पैसन जाके
0: रकीब वागी दुसैन के पास

विनोद रखन के वास में भी आप सुनते और अब की बार सुनते रहना हरी शिव बालक के वास में।

श्याम बंधु, श्याम बंधु के आवाज में अभी आप सुनते प्रोग्राम से और आपकी बात। राजू शिव गुलाम के आवाज में के दगरा बोलानी चलब हम कैसे।

चार बजकर इस वक्त सात मिनट गुजर रहा है, सेफ मिनटन ओवर फेर लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS।

0: अर्जुन अवतार के पास में अभी आप सुने थे
1: रविंद्र सिंह सिवनाथ के पास में

रविंद्र सिंह शिवनाथ के वास में भी आप सुनते हैं। लाइव के जरिए शरीर केंद्र से यानी कि टेम्स ड्राइव 237 शरीर केंद्र से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS।

मेरे गलिये में सनातन के वास में भी आप सुन रहे थे कि जुलुम करे तेरे माथे कित कुलिया आंद्रे मोहन के वास में

0: के मोर चिरैया तोर चिरैया, इक्के संगे सूते और इक्के संगे जागे, तैनाक से बेया रम अवतार की पसंद। तभी आप सुनते
1: अब ही माली मोर उमरिया
0: केसरी प्रसाद के आवाज में।

चंद्रवती कन्हैया के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS और वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना।

0: इस गाने को अपना हेलो ट्यून बनाने के लिए एयरटेल के फोन से डायल करें 55055।
1: पांच बजकर इस वक्त 9 मिनट गुजर रहा है। नई कम्युनिटी नंबर 5 बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम लाइव के जरिए ओवर रेडियो SBS

बलेश्वर, बलेश्वर और साथियों के पास में अभी आप सुन रहे थे क्रिस राम खेलावंत के पास में, बस सुन

0: क्रिस राम खिलावन और साथियों के पास में भी आप सुन रहे थे
1: गजहकसी मत कूटे

0: अक्षय कुमार नंदा का पसंद भी आप सुनते प्रोग्राम से और अब की बार
1: कोई के जोड़ी पतरी पतरी कोई के जोड़ी
0: उत्तराखंड लाइट्स रहे उत्तराखंड लाइट्स रहे से रजेश उदित का पसंद सुनते रहना।

Utrecht, Leidsrijnse, Rajesh, Rajesh Udit का पसंद अभी आप सुनते प्रोग्राम से. रामदेव चैतू के पास में बस सुनते रहना. स्पेशली Eindhoven के रहने वाला हैंक महावीर के लिए नंबर पेश किया जा रहा है.

समाप्त होने पर आया। आज की बाइट गाना प्रोग्राम यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बाइट गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स न्यूज फिर केस फार्मेसी और उसके बाद में आज अंशलि के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आप ही का खिदमतगुजार ग्लेन। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आर डी बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज़ में। रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, पलक मुच्छल की आवाज़ में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से? ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से। लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जुबेन नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जुबेन नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे, जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्या फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्या फिल्म फना कोम दाखसंग दोर कैलाश खेर एंशान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मा...

अभी अभी आपने सुना के की आवाज में फिल्म जिस्म दो से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

गुलाबी स्काई, फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिल विल प्यार व्यार से। हरी हरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

हेलो, मैं हरी पिया हूँ ही तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,